我觉得我们说还跟我们说个别的美国人说的美食技术高你说啥不得的技术高所以美国人不能比什么你说全大的农民你说那个多事情那里就是有的大事我们跟技术高这次美国人说的我哎呀这都我一天的过去你有不是这个一个地图大概能够那我一天我就一直说的美国人给我们技术技术高这个能够大概能够给我们能够给我们的八十万ये ननाको मेदो दबाच मोन के मग ननाको आयो निकमोन के जे बेतम के मग गाइस बेतवानो ए जी एम हिक स्टेसी बेयर हु दे दे चेगे वश केग्निश शेग दे वचित वी ओ हम वी ना स्वेस के जी दिता गनियो हेबनी ग जी स्टद के इट्स गुड मास विद न्यू जे जी हम के हम बहितद न्यू आयो ची मानियो गे हु दे दे चेगे आई उ द विनेबेग टूर्स के मग गाइ इनगे टक्स के ने स्टैनली बोट Ja vi på bohtagen oss en här på det här så i tron gejs att skott maga nu check maga nu i katt skott marsut gär. Jag kan nu att jag bättre och att jag har hem hig. Jag har gitt mig gär. Och skag.